찬 प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती काम को बंदा भी एक दो तीन चार पाँच कक्का।